0: विद्दु and when is the thing everything is have done then how that
1: sve je prikazano
0: ta ta ta ga di da da di nam ta
1: Shiva koji pleše
0: da gdi gdi blag di kada ga gdi gdi grag da du da di kabadai ta re ge ge ge ge एक पैर के अंदर में कितना इतना लगा करके दो है नींद का और ये जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
1: वो सहस्र चक्र

Judith Miranda Jovan विश्व गुरु महामान्य स्वासी स्वामी महेश्वरानंद जी गुरु की जय।

0: दिलीप नारायण
1: भगवान की
2: जय।
0: माता जी की
1: जय। देवपुरी भगवान की
2: जय।
1: हरिओम।

0: दीप नारायण
1: भगवान
0: की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री स्वामी माधव नंजी गुरुदेव की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंजी गुरुदेव की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवपुरी जी महा

0: श्रीदीप नाम भगवान की जय, श्रीमदानंद जी भगवान की जय।
1: थैंक यू एंड टुमारो विल बी मोर ओके।
2: जितना आप सीधा उदासी
1: प्लीज कम।
3: There's a very powerful prayer which we hardly ever sing.
2: Je jedna velice silná modlitba, kterou málo kdy zpíváme.
3: Shri Satguru Bhagavan ki arati. Shri Deep Narayan Bhagavan ki jai.

0: भगवान की जय। श्री माता वनंद होली गुरु जी श्री सत्ता गुरुदेव श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।

0: श्री श्री देव पुरी महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर का हम स्वामी का चरण पूरी जी को।

नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण न श्रीमन्नारायण नारायण।

नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।

0: दीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: इंद्र रामायण होली बुक रामायण
1: रामायण संत könyvében
0: तुलसीदास जी महाराज इज राइटिंग
1: तुलसीदास जी महाराज azt írja,
0: जो इच्छा कर ही मन माई हरि कृपा दुर्लभ नहीं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस व्हाट तुलसीदास जी सेड।
1: Ez Tulsidas Jinak egy csodálatos mondata.
0: Well, he said,

0: भगवान
1: की जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।

दीप नारायण भगवान की, देवपुरी समादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। इन साधना टू क्रिएट सात्विक वृत्ति, द वृत्ति व्हिच इज इन पतंजलि इट इज एट योगा चित्त वृत्ति निरोध। द फर्स्ट इज सेड अथ योगानुशासनम। Yoga begins with discipline. If there is no discipline, then your practice will not be successful. So, atha yoganushasanam. Which kind of discipline we should have? Eating, drinking, walking, society, work, thoughts, vichara, etc., etc. Sattvic, positive, the thoughts always should dwell in our consciousness. Yoga chitta vritti nirodha.

ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।

हथेलियों को अच्छे से मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा

0: और दया की प्रतिमूर्ति हैं पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं। सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव महादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मतलब वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूं, लोगों के प्रति दया करूं। दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो तुम्हारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शांति।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Delight Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Delight Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Delight.
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life.
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpa ji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: Did I say?
2: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti विश्व शांति नेपाल के लिए। तो ब्रह्म ऋषि जी आइए आप, एंड प्लीज सिंग वन भजन, दर्द दुख दूर हो जाए, दया हो जाए। मिश्री लाल जी, ब्रह्म ऋषि पी थावला नागौर कैश्मीर
3: नागौर। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण।

सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताई है वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बने क्या, और वो भी भारत खंड के अंदर बने क्या। 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम, ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं। क्या तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो माधवानंद जी महाराज जो है ना, मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 82-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में,

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। तू जान बूझे कोई पाप न करे, हो जाए तो पश्चाताप न करे, ये सब लीला उस ईश्वर की, तू ध्यान वो

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज धीरे के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी झोली

पॉसिबल। बोल सतगुरुदेव की, दीप नारायण भगवान की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की। ओम। सभी बोले

0: सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव ओम शांतिः शांतिः शांतिः ओम। ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं, आप ट्रांसलेट करो।
1: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he gave, he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhya, Ananta Sri Bhushita, Shraddhya Mahamalleshwar Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही
1: है। सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स of which our dear Mahamandaleshwarji is telling for Vishwa Guruji has a long translation. So he says that revered and respected Vishwa Guruji, Paramahansa Maheshwarananji, who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
0: Aur mujhe aisa lag raha hai कि स्वामी जी की ये साधना ये तपस्या एक दिन ऐसा रंग लाएगी आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे।
1: एंड ही थिंक्स दैट दिस तपस्या दिस काइंड ऑफ साधना विल

0: देन दिस इज गुरु.
1: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है.
0: Nobody saw God.
1: गुरु जी हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं.
0: Our commentators of spiritual texts say there are three very rare things in this world.
1: First, सबसे पहली मानव का जन्म.
0: First is the being born as a human.
1: दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति.
0: Reaching the divine consciousness.
1: और तीसरा महापुरुषों का सत्संग.
0: And third is the satsang with the great saints.
1: हम इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता.
0: We believe that human life is not available all the time.
1: मनुष्य जीवन में दो विशेषताएं हैं. एक तो हमें परमात्मा ने जैसी बुद्धि दी है, मनुष्य को वैसी बुद्धि किसी और प्राणी के पास नहीं है.
0: There are two things important in human form. One is the intellect, which no other living beings have.
1: और दूसरा हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है. ये केवल मनुष्य को ही कर्म की स्वतंत्रता मिली है.
0: And we are free to do whatever things, whatever karmas we want to do. So intellect and karmas are something specially made for humans.
1: हमें सबको समय बहुत कम मिला है, इसी समय का हमें सदुपयोग करना है.
0: We got a very limited time and we have to do good in this time.
1: हमारे यहाँ वेद में कहा है, इह चेद वेदी असत्यमस्ति ना चेद यहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु वचित्त धीरा प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृतः भवन्ति. जिसका भावार्थ ये है कि इस मनुष्य जन्म को पाकर उस परम तत्व तक, उस परम सत्य तक पहुँच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा.
0: In Vedas it says that if you are born as a human and you have to reach to this enlightenment, otherwise will be a lot of suffering.
1: उस परम सत्य तक पहुँचने का मार्ग गुरु ही बता सकते हैं. जैसे परम श्रद्धेय स्वामी महेश्वरानंद जी ने लाखों हजारों लोगों को इस मार्ग पर लगाया और मार्ग दिखाया.
0: So to show this path, we have great saints, and one of that is our Gurudev Vishwaguruji, who taught hundreds of thousands of us on the path how to realize oneself.
1: इसलिए हमारे यहाँ गुरु का बहुत महत्व बताया गया है. वेद में कहा है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथते अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः. जैसी हम लोग श्रद्धा गॉड पर, ईश्वर परमात्मा पर है, वैसी ही श्रद्धा हमें गुरु पर भी होनी चाहिए.
0: So in Vedas it said that as much as we believe in God, the same amount of belief we should have to our guru.
1: इस आश्रम की परंपरा बहुत प्राचीन और बड़ी पवित्र परंपरा है. परम श्रद्धेय स्वामी अलकपुरी जी महाराज, स्वामी देवपुरी जी महाराज, दीप नारायण प्रभु जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी माधवानंद जी महाराज और श्रद्धेय विश्व गुरु जी महाराज.
0: So our parampara, our lineage is very holy and very old. It starts from Alakpuriji, continuing to Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji, and now Vishwaguruji.
1: इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं, आप सबको ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है, ऐसे गुरु की शरण में आप आए हैं.
0: You are very lucky to get such a guru and be protected in his shelter.
1: इसलिए इस गुरु के माध्यम से ही आप उस परम सत्य तक पहुंच जाएंगे और आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा.
0: And because of that, you will be able to reach your destination, the final liberation, and you will be free.
1: हरि ओम तत्सत. हरि ओम
0: तत्सत. Short and sweet. Deep Narayan Bhagwan ki jay. Swami Atmanand ji Maharaj ki jay.
1: Swami Gyaneshwar Puri ji Maharaj ki jay.
0: This was, I think, it was like an introduction to the lecture, because I know that he speaks minimum for 3 hours. So this was very short and sweet. In India, there is a saying, Gagar Me Sagar. It means that in a small pot, you fill the whole ocean. So the essence of the human life, why we are here in Om Ashram, he just explained. So I will just continue a little.

ब्रह्मानंद सहोदरी श्रुतिमयी सद्वल्लरी पावनी पीयूषां बुद्धिमंथनोद्भवरसा मुल्लासनी माधवी श्रीमद्भागवताख्यधाम बसती

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: हमारे अध्यात्म में, रिलीजन में, धर्म में प्राइमरी की 10 पुस्तकें हैं।
1: इन द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर इन हिंदू धर्म एंड रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी देयर आर 10 बेसिक एंट्रेंस बुक्स, प्राइमरी बुक्स।
0: धृति क्षमा दमोस्ते यम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मानी धारण करना,
1: सो टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरति, पकड़।
1: सो दिस इज लाइक व्हेन विश्व गुरु जी इज विद अस एंड वी टॉलरेट और वी आर रेडी टू सपोर्ट और बेयर एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम।
0: गुरु जी ने जो आपको मंत्र दिया है, उपदेश दिया है और अपना लक्ष्य बताया है।
1: सो व्हाटएवर द विश्व गुरुजी गेव यू द मंत्र, द टीचिंग्स एंड ऑल व्हाट यू हैव टू डू,
0: उस पर पकड़ रखना,
1: यू हैव टू फॉलो,
0: इसको धीरति बोलते हैं।
1: दिस इज कॉल्ड धीरति,
0: क्षमा,
1: एंड्यूरेंस, पेशेंस।
0: कोई छोटा आदमी अगर कोई गलती कर जाता है तो बड़े आदमी को उसको क्षमा करना चाहिए। जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है, आई एम वेरी सॉरी।
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकेंड वन इज टू फॉरगिव। सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स।
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड।
0: धृति क्षमा दमोस्ते यम प्राइमरी में है किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना, नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा।
1: The third step is do not steal. Whatever money, things or something you have, they should not steal.
0: पवित्रता,
1: purity,
0: पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो लाते हैं excuse me, veg, non-veg, veg, non-veg.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because, or air, because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शोध मनी शुद्ध नहीं होता।
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृती क्षमा दमयस्तेयम शोचम मिंद्रिय निग्रहा। हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवें, ऐसा खान पान आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए।
1: So we should eat, drink, think, listen, or whatever we do should be in a such a way that our life grows, that we are going upwards in the upper trajectory.
0: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है आपका आहार शुद्ध होगा व्यवहार शुद्ध होगा आहार शुद्ध हो सत्वशुद्धि तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे पकड़ सकोगे कैच कर सकोगे
1: In Brihadaranyaka Upanishad it says, if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
0: Dhir vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam. Dhir vidya, buddhi, mind. Isko buddhi ko सदुपयोग में लाना चाहिए थी बनी बुद्धि और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है धीमनी बुद्धि है माइंड ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड It should be pure and this happens from the food.
0: Vidya.
1: Knowledge.
0: Knowledge. जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे उलझावे नहीं सा विद्या या विमुक्त ही जो आपको उलझावे नहीं सुलझावे उसका नाम है विद्या
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू नॉट व्हाट बाइंड्स यू व्हाट डजंट कवर यू और व्हाट मेक्स यू बाउंड व्हाट मेक्स यू फ्री
0: आप उलझे नहीं हैं इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं राग नहीं द्वेष नहीं क्रोध नहीं काम नहीं ईर्ष्या नहीं ममता नहीं और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं आप
1: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
0: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है सत्यम बदो धर्मम चरो सत्य बोलो धर्म का आचरण करो
1: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
0: A course aapka primary ka 15 minute mein pura ho gaya.
1: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: Ek hi aadmi ke liye, ek hi sadhak ke liye, एक ही शिष्य के लिए एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है जो उसके घर से साधना शुरू होती है
1: So for any sadhaka, any bhakta, any disciple, for any human being, all these primary things are necessary as a base.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है ज्ञान अलग है भक्ति अलग है ऐसा अलग नहीं है एक ही रोड के अलग अलग नाम
1: So there is only one road with the different names. Somebody is calling yoga, somebody is calling jnana, somebody is calling this or that. There are no different roads.

0: बम्बई सूरत रोड प्राइमरी, सूरत बड़ौदा मिडिल, बड़ौदा रतलाम हाई, रतलाम
1: He's telling the map of India.
0: India. Same like the map of Switzerland. एक ही रोड के जैसे बम्बई से सूरत, बम्बई सूरत रोड नाम हो गया. और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता.
1: So like when you start from Bombay going to Surat, this is called Bombay Surat Road. When you cross Surat, it's called Surat Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle ka arth hota hai yog mark. Jis mark ka naam, jitna ka mark ka naam yog hai, usko yog bolte.
1: The middle school is yog.
0: Yog mein आपके लिए आठ पुस्तक हैं जिनको आपको ध्यान दे करके पढ़ के पास होना है.
1: So in the yoga there are eight books in which you have to study and then pass.
0: यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक. यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति नियमयति दंडयति स्वान, अपने को नियमित करना. उस पुस्तक का नाम है नियम.
1: The book which tells us how to control ourselves is called नियम.
0: नियम, यम अपने को रोकना.
1: यम इज द बुक विच टेल अस
0: हाउ टू स्टॉप आवरसेल्व्स. का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वो नियम हो गया.
1: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स व्हेन योर.
0: नियम मीन्स कानून को पास पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना.
1: To follow the laws and rules, to put it in your life, this is called niyam.
0: Yam niyam ke baad mein asan hai.
1: After that is yam.
0: Body ko set karna, body mein jo point hai, un pointon ko highlight karna, aur उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं, हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना, इसका नाम है प्राणायाम.
1: So
0: और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना, ये है आसन.
1: So the third book, Asan, tells us how to keep our body clean and how to make it strong and so on. And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
0: Asan se aapki body shuddh hoti hai. Aur isi prakar se pranayam se aapke andar paanch ear hai. वो पांच ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए, सामान की, मटेरियल की, सामान की.
1: सो लाइक द आसनस प्यूरिफाई द बॉडी, मेक इट क्लीन, द सेम वे द प्राणायाम डज फॉर ऑल दिस फाइव प्राणस, फाइव टाइप्स ऑफ एयर विच देन सर्विस आवर बॉडी प्रॉपरली.
0: उसके बाद में प्रत्याहार आता. प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है शॉर्ट एंड स्वीट. समझ गए? प्रत्याहार मनी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
1: सो प्रत्याहार

0: is to withdraw oneself from outside and make oneself inside.
1: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम। फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते हैं, आसन प्राणायाम। फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है।
0: So nowadays in the world it's very famous, the yoga, it's only mentioning just asanas and pranayamas, what is good for the body, but yama and niyama, the rules of outer and inner behavior that nobody tells.
1: आसन प्राणायाम के बाद प्रतिहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते।
0: So after the asana and pranayam, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
1: ये मेरा toothpaste है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माय।
0: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
1: ये मेरा चमनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है। तो प्रतिहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया।
0: So
1: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है।
0: So instead of pratyahar, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
2: Guruji, ये बैठा
1: नहीं। बाबा रामदेव जी। कहाँ? अच्छा वो हमारा चेला है वो। इनको पता है सबको। तो उसमें ये है। अब इसके बाद में होता है धारणा। धारणा जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं।
0: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन।
1: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं। ये मेरा संगीत वाला है। धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला। ओ भाई,
0: सो यू लुक
1: संन्यास लेगा,
0: मींस धारणा
1: नहीं लेगा, नो धारणा।
0: धारणा मींस एक्चुअली आल्सो कंसंट्रेशन, सो यू लुक एट माय द ढोलक पर्सन इफ ही वांट्स टू हैव संन्यासा, सो ही सेड नो थैंक यू।
1: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं।
0: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara, you are a great person.
1: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो, तुम भी संन्यास ले लो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नो नो नो नो नो।
0: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi, you also take your 21 generations across this world. I said, no, thank you so much.
1: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है।
0: So desires in this life, they are not fulfilled for this person and his concentration towards God, dedication is not there.
1: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है। ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
0: Before meditation, you need some knowledge.
1: एक जो है वो ध्यान बिजनेस बन गया है।
0: And this knowledge became now business.
1: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है। लेकिन ध्यान का ध्यान

0: से पहले ज्ञान चाहिए.
1: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make, it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: So if I tell you, please take the money from me, and then I give you 5, 10, 20, 50, 100, or 500 rupees, which one you will take?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: From all of
0: 500 का ना, 500 का.
1: From all of this, you will take 500. 500
0: का ठीक है ना?
2: 2000 का.
0: 2000 का बंद कर दिया मोदी ने यार. 2000 दे दे. 200 का नहीं. कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी?
1: So
0: नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो.
1: Now we are like
0: again hand. Yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज़्यादा होती
1: है. सो यू कैन डू ध्यान ध्यान विच व्हेन यू वैल्यू समथिंग रियली मच.
0: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्तोपि दुखेना गुरुणा न विचालयेत. तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व होता है, उसी को आदमी याद करता है.
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है. अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज़्यादा है.
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this after the meditation you will continue thinking, or during the meditation you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता, संसार होता, लेकिन मनुष्य का ज़्यादा ध्यान गोल्ड पे होता
1: है. There is a family.
0: क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है.
1: The for any human, the life, the family and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है. समाधि हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था, दिल्ली में. हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है. समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्टैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्टैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है. केवल केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते.
1: समाधि इज व्हेन यू फील ओनली योरसेल्फ, देयर इज नो कनेक्शन विद योर बॉडी, देयर इज नो कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड, यू हैव कनेक्शन ओनली विद योरसेल्फ.
0: हमारे विश्व गुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में 2 प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प.
1: There are 2 types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: Sabikalp samadhi usko kehte hain, jahan par sadhak pakka hai. Aur usko upar uthane ka sadhan bhi sachcha hai. Aur jahan ki uska god, jo usko pana hai,

0: गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि.
1: सो इन निर्विकल्प देयर गॉड अहम ब्रह्मास्मि आई एम ब्रह्मा.
0: ये हो गई. अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे.
1: सो दिस इज 12th क्लास.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं.
1: सो 12th क्लास इज भक्ति.
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं. 9
1: इन द कोर्स ऑफ भक्ति देयर 9 बुक्स.
0: 9 पुस्तकें. बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना. नहीं, हमने सुनना चाहते.
1: सो फर्स्ट
0: श्रवण भक्ति.
1: सो फर्स्ट इज लिसनिंग. सो लिसन ओनली व्हाट विश्व गुरु जी सेज, नथिंग एल्स.
0: अंदर से याद करो तो ओनली विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो. ये कीर्तन है.
1: Kirtan or remembering is that you remember only the words of Ishwar Guruji, nothing else.
0: Yaad karo, to ek matra Guru aur Govind ko yaad karo, dusre ko nahi. Ye smaran bhakti hai.
1: Remembering the smaran bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: Surrender. Charanon mein jhuk jana. चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है.
1: सो दिस आर द डिफरेंट वेज हाउ टू सरेंडर योरसेल्फ टू द लोटस फीट ऑफ मास्टर.
0: पूजा पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की. दूसरे की, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है.
1: सो इफ यू डू सम पूजा, इफ यू डू सम सेरेमोनी, डू द सेरेमोनी फॉर गॉड एंड गुरु. इफ यू फॉलो समबडी, फॉलो गुरु एंड गॉड, बिकॉज अदरवाइज यू कैन गेट लॉस्ट.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं.
1: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called vandana. This next
0: दास्या, सेवक, शिष्य, उसको दास्य भक्ति कहा गया है.
1: Next one is serving, to serve the Guru and God.
0: दाश, अपना अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं.
1: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू रिनाउंस ऑल ऑफ योर आई or of your egoism, and then you dedicate your life to the service of the Guru.
0: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है, तो उस समय पर गॉड, भगवान, गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का विरोध व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं.
1: सखा भक्ति इज द नेक्स्ट स्टेप, इज व्हेन यू बिलीव एंड ट्रस्ट योर गुरु सो मच दैट ही आल्सो कैन बिकम लाइक योर फ्रेंड.
0: हमारे सनातन धर्म, वैदिक मार्ग, भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नजदीक गए, तो भगवान ने उनको फिर दास नहीं रहने दिया, सेवक नहीं रहने दिया, उनको सखा बना दिया. सखा, मित्र, फ्रेंड.
1: व्हेन अर्जुन वाज विद कृष्णा, ही डिडंट, आफ्टर सम टाइम ही स्टॉप्ड बीइंग हिज सर्वेंट, ही स्टॉप्ड बीइंग हिज सेवक, ही बिकेम हिज फ्रेंड.
0: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है. बोलो महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सुबेरे चला चलूंगा. चलो इसकी तरफ

0: से मैंने बोल दिया। कहते आत्मनिवेदन।
1: Atmanivedan is when you say I'm going with you tomorrow morning, I will go with you wherever you want.
0: वो आत्मनिवेदन है। आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं।
1: So it's a request of the soul that I want to live in that condition, I want to live in such a way like a God is living.
0: इसके बाद में फाइनल MA की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए, वो क्या है, ज्ञान की भूमिका।
1: So the MA, the master degree, is the index of knowledge, is the last one. Or introduction to knowledge.
0: उसमें सात पुस्तकें हैं, उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई,
1: सेवन बुक्स
0: उसमें है। पहली बुक्स क्या है, सुभिक्षा। क्या है भैया सुभिक्षा? सुभिक्षा क्या है बोलो, गुरु जी अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम काम आना।
1: First book is Svaicha or the own desire, and you say, Gurudev, I want to live with you.
0: Acha, ab
2: dusra. And then he said, you're most welcome. I'm not stopping you. I have no problem. Come.
0: आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं। अच्छा, अब बोलो, गुरुजी।
1: गुरुजी।
0: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास।
1: The second one is, oh Guruji, I think the same like you, and Guruji says, okay, then take sannyasa.
0: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है, उसको कहते हैं विचारणा। उसको क्या बोलते हैं?
1: विचारणा।
0: उसको विचारणा बोलते हैं।
1: Vicharna means thinking. It's like when your thoughts and guru's thoughts are equal. You're thinking like your guru.
0: Tan Mansa. Iske baad mein jo hai, pustak hai, Tan Mansa. Guru se jab vichar milta hai, to jaise badi tanki mein se, pipe mein se paani aakar ghar ki choti tanki mein aane lagta hai, aise hi guru ka gyan shishya mein aane lagta hai. Isliye usko Tan Mansa bolte hain. Any connection, badi tanki se choti tanki mein connection.
1: So the next one is Tan Mansa, when the guru, the knowledge of the guru slowly starts to be transferred to the small pot of shishya, of disciple.
0: Sattvapatti. Ab chaturthi jo hai, gyan bhumi suvichha syat, prathama samudhairta, vicharana dutiya syat, tritiya tanumanusa, sattvapatti chaturthi syat, पंचमासन से आत्मका पदार्थ भावनी षष्ठी सप्तमी त्रियगास्मृतम। तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते।
1: Sattvapatti is the next step when in guru and disciple there is no difference in their thinking and everything.
0: Padartha bhavani kehte hain. Padartha bhavani. Jaise aapko chai yaad hi nahi aave, coffee yaad hi nahi aave, chutney yaad hi nahi aave, rasgulla yaad hi nahi aave, ice cream, phir 15-15 injection.
1: So the next step is when you even don't remember, you know, neither any sweets or anything, any food you like. There is nothing there.
0: Padartha bhavani ka arth ye hai ki aapke samne stone ho aur aapke paas mein jo hai gold ho, is dono ko aap barabar samjhe, isko padartha bhavani bolte hain.
1: Padartha abhav, the detachment from the anything, is like you can have a stone.

0: or you can have a goal for you, this is equal.
1: नहीं, पहले असंशक्ति. असंशक्ति ये है, असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति.
0: Asanshakti is when you don't think and then you go back to your family, to your brothers, sisters, wife, parents and children.
1: अब तो हमारा एक ही नारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा.
0: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
1: पदार्था भावनी, जहाँ सोना मिट्टी बराबर लगे, कोई भी उपलब्धि, कोई भी प्राप्ति, संसार संबंधी जो अपने को प्रभावित नहीं करती हो, उसको शास्त्र ने असंशक्ति कहा.
0: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
1: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था, परीक्षित को तक्षक काटेगा, और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं. आप डरोगे जब कोई आएगा, ईयर वो क्या ना बोलते उसको,
0: सांप, सांप, स्नेक,
1: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे.
0: So like in Bhagavad there is this curse of king.
1: इसको पदार्था भावनी बोलते हैं कि किसी से भी हमको खतरा महसूस नहीं हो, डरने लगे. और कृष्ण भगवान ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्ति आपो, न शोषयति मार्ग. आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है वो भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है. ऐसा आपका स्वरूप है, उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी. उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं.
0: So this is that book Padarthabhav. There is no fear of snakes. There is no fear of death. There is no fear that the fire will burn you, you will drown in the water. That anything will happen with any element. So this is the highest form.
1: Turiya avastha usko kehte hain, jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho. और आपकी उसके प्रति कोई आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो, तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं.
0: एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज तुरिया अवस्था द प्लेस और द माइंड स्टेट व्हेन यू हैव एनीथिंग अराउंड यू एंड देन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क इन दैट.
1: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरु जी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया.
0: सो इन आवर लाइफ्स from the starting point we have to pass all these tests and we have to convince the guru and the god that we did, and then whatever you invented it as, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This acharya ji is telling to us that we should success, we passed, and we should successfully pass all Vishwa Guruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
1: Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti.